परम सन्मान योग सत्कार योग सतगुरां दे परम प्यार च परोती होई गुरु रंग च रंगी होई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च एकत्र होके हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां समां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे हो। मेरियां पेरियां दे मालक सतगुरु छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब गरीब नवाज पातशाह जी का अज पावन पवित्र गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा है। अज दे दिन सतगुरु पंजवें पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब ते जो पवित्र स्थान है कोठा साहिब कोठा साहब वाली पवित्र जगह ते धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दित्ती। ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी पासों गुरियाई दा तिलक दवाया और बचन कीता कि प्रगट उदों करना ये बचन जदों असीं लाहौर जाइए तो उत्थों सुनेहा भेजिए, क्योंकि पातशाह ने लाहौर जाना सी उत्थे जा के अकाल पुरख जी दे हुक्म दी खेड विच रजा च वरतना सी। तां इस करके गुरियाई पहला पंज क सिख सन उन्हां दी हाजरी विच दित्ती है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत तो बाद छेवें पातशाह जी गुरता गद्दी दे तखत ते विराजमान हुए। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के सानमुख पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब जी की रचना की। सेली ते टोपी नूं मत्था टेक के खजाने च रखा दिता और मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां सतगुरु छेवें पातशाह ने अपने गात्रे धारण कीतियां। सिखां दी फौज भर्ती करनी शुरू कीती, घोड़सवारी नेजेबाजी शिकार खेडना, संत पुणे दे नाल नाल ही शिपाही पुणे दी बिरती छेवें पातशाह ने अपने सिखां नूं बख्शिश करनी शुरू कीती और दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बो परोपकारी होके संसार विच प्रगट होए। ऐसे बंदी छोड़ सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे गुरता गद्दी दिवस दियां समुचियां गुरु कियां साजियां नवाजियां संगतां नूं लख लख वधाई होवे। छेवें पातशाह दे चरणां च अरदास करिए कि सतगुरु कृपा करो, तुसी बंदी छोड़ हो। महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने एक बहुत ही प्यारा दोहरा रचिया है छेवें पातशाह दे चरणा च बेनती करदे हां। वो फरमाउंदे हन सतगुर

सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन वाहेगुरु सुन सखिए सुन सखी मिलन निशानी सुन अखो सतनाम श्री बहुत ही प्यार दे नाल गुरु इतिहास की विचार कथा सत्कारयोग ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी गुरद्वारा दुख नवाण साहब पटियाला वाले उन्होंने पासों आप जी सरवण कर रहे सो गुरुद्वारे आने का मकसद ही यह है कि सुरती शब्द नाल जुड़ के जिस तो अपनी जिंद आत्मा विछड़ी हुई है उस मंजिल वाले आत्मा तुर पै ये जीवन जन्म सफल हो सके अंदर दी जिंद आत्मा क्योंकि आत्मा जिंद दे सहारे अपना शरीर खड़े और जिहदा आपां नूं सहारा होवे ना वो अपनी सहेली हुंदी जिहदा आपां नूं सहारा होवे वो अपने सज्जन हुंदे जिहदा आपां नूं सहारा होवे वो अपने सखी हुंदे जिंद दा सहारा है अपने शरीर नूं शरीर विच्चों जिंद निकल जाए तो हुणे इस शरीर तो लोकी डरन लग जाणगे शरीर विच्चों जिंद निकल जाए इस शरीर तो हुणे लोकी डरन लग जाणगे ताइयों जदों बंदा मर जांदा है उहदे मूंह ते कपड़ा पा दिंदे क्यों उत्तों डर आउंदा है उही शरीर हुंदा है जिंद निकल जाए आत्मा चली जाए तो इस शरीर नूं बहुती देर घर विच नहीं रखिया जा सकदा लोकी जमा करा दिंदे ने क्यों भाई जिंद आत्मा करके ही यह शरीर सोहना है जिंद आत्मा करके ही इस शरीर के संसार विच रिश्ते ने आप किसी के पुत्र हाँ किसी के मां प्यो हाँ किसी के भैन भरा हाँ क्यों जिंद आत्मा है जदों इस विचों आत्मा चली गई फिर आप कुछ भी नहीं किसी के तो इस शरीर को उस वक्त लोग जमा करा देंगे और जदों सारे रिश्तेदार सज्जन मित्रां नूं तुसी स्नेह लाउंदे कि उह इस तरह फलाना प्राणी काल चलाना कर गया तो उहनां दी जुबान ते पहला वर्ड पहला शब्द पता की हुंदा है फ्यूनल कदों है संस्कार किन्ने बजे है क्योंकि इस शरीर नूं फिर रखिया नहीं जा सकता सो जे तक सहारा है शरीर नूं उह सखी है सहेली है सज्जन है वो की है आत्मा तो हजूर फिर इस आत्मा नूं कहिंदे सुन सखीए हे भैणे सुन आत्मा नूं सुनाउणा हे सखीए सुन प्रभु नूं मिलण दी निशानी हे आत्मा परमात्मा नूं मिलण दी निशानी सुन महाराज की निशानी है कहिंदे मन ते तन दोए चीजां गुरु नूं अर्पण करनियां पैनियां और फिर उस तों वड्डी गल लोकां दी लाज त्यागनी पैंदी बहुत सारे कर्म जिहड़े आपां लोकां दी लाज करके नहीं करदे लोकी की कहणगे लोकी की कहणगे लोकी की कहणगे लोकां वल वेखदे और कई बार लोकां दी लाज सानूं झुकणी नहीं दिंदी लोकां दा डर साडी ईगो नूं बरकरार रखदा है सानू चुकन नहीं दिंदा वो क्यों लोकी की कहणगे मैं इनू मत्था टेक रहा लोकी की कहणगे मैं इहदी सेवा कर रहा लोकी की कहणगे मैं इहदे थाल जूठे चुक रहा लोकां दी लाज त्यागनी पैंदी सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी मन तन अरप तज लाज लुकन्नी श्री गुरु अमरदास महाराज जी धन गुरु अंगद देव महाराज जी चरण शरण विच आए और वेखो बड़ी आश्चर्य गल 60 साल की उम्र विरद शरीर चिट्टा शमशदाड़ा है आप हमेशा अपने घर दियां नौहां विच ना नुक्स कढ़दे रहिंदे
ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਕਲ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਧੀਏ ਜਿਸ

अखो सतनाम श्री सुन सखीए प्रभ मिल निशानी मन तन अर्प तज लाज लुकानी लोगों की लाज छड़नी पैंदी कि मैं लोगों के भांडे चुका मैं उन्होंने पहला बुलावा रब नूं मिलन वास्ते लाज छड़नी पैंदी। गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आग्या मन में सह अगली शर्त आपस को कर कश ना जनावे। जोड़े लाउण लग्या अपने अहुदे पदवी अमीरी तनवान विद्वान सब कुछ उत्थे बाहर रख दो। जान लग्या फिर चुक के लै जाई कि तू कौन है तेरे कोल किन्नी अमीरी है पर कम से कम जोड़े लाउंदियां मन दी ओ हमे दी गंदगी भी ला दे फिर गुरु कोलों कुछ मिल ले। मन विच सतगुर के पास उत्तों पहली शर्त आपस को

जे तू ठंडा होना है फिर वाहगुरु के नाम ने तेन ठंडक देनी है, होर कोई चीज नहीं तेरी सुरती ठंडी करने वाली। इगो अहंकार वधेगा, होमे त्रिशना की अग है, इको चीज न बुझनी है वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु कह। अच्छा चार तरह की अग है, सुनो ये थोड़ी नॉलेज भी वाधा होगा, यह जिक्र हजूर ने बाणी अंदर किया है तो मैं ये कर लगा। चार तरह की अग है जिहड़ी तुहानू पहलां बाहरों दिसेगी। बाहरली अग विच एक बड़वा अग है, समुंदर दे विच भी अग है, कदे तुसी वेखोगे जवार भाटा आउंदा है समुंदर दे थल्ले भी अग बलदी है। एक अग है आकाश विचों पैदा हुंदी है, जदों कदे तुसी देखो बदल कहिंदे ने आकाश विचों असमानी बिजली वह धरती दीआं कई चीज़ां साड़ के सुआह कर दिंदी, वह भी बहुत वड्डी अग। उस तो बाद तीसरी अग पेट की अग है, तुसी भोजन खाते हो पेट विच रब ने जठरागन इनू कहिंदे जठरागन, जठरागन का अर्थ है जठर अगन, पेट की अग। कच्चा भोजन खाओ कौन पका देंदे अंदर, कच्चा सैलड खा रहे हो तुसी, कच्चे फ्रूट खा रहे हो, कौन है किहड़ी अग है अंदर जिहड़ी वह भोजन नूं तपा के जो जो तुहानू विटामिन मिल रहे चाहिए ने वो शरीर नूं पचा देंदे, बाकी वेस्ट साड़ के बाहर। पेट विच भी अग है, खाधा होया भोजन पक जांदा है उहनूं पेट की अग पचाउंदी है जठरागन। एक हजूर ने कहा उधर की अग, वह माता दे उधर विच है जिथे रब ने एक मास का छोटा जिहा लुथड़ा बनना शुरू होया। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਬਣ ਗਏ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਹ ਮਾਸ ਦਾ ਲੁਥੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗ ਪੈਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਅੱਗ।

तेरे घर चो दलिद्र नहीं मुकदा, दुख नहीं मुक रहा। उठदे बहिंदे घर च कहन लग जा धन गुरु रामदास धन गुरु, जा मिट जाना घर विचों दलिद्र मुक जाएगा। वाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिटे ओ सब खिण, कर्म कर तोय दर्श परस पारस सर वल पट।

आखो सतनाम श्री। अपने घरां विच बाणी पढ़ो, बच्चों अमृत छकाओ, आप अमृत छको। हर घर विच जपजी साहब का पाठ होना चाहिए। जिन्हां नूं पंजाबी आउंदी हथ खड़े करो। हुण तुसीं इह गुरु अग्गे अरदास करो, तुहाडा जपजी साहब ना कदे खुसे। रोज जपजी साहब करो, कर लोगे भाई हथ खड़े करके जकारा छड़। करा गुरु ने आपे ही लैणा है। वाह जी वाह। मेरा विश्वास है दिन रात दे 24 घंटे ना, 24 घंटिया चो 24 मिनट कढ के जपजी साहब करो। 24 मिनट लगते हैं जे सहज नाल पढ़ोगे। 24 घंटिया चो 24 मिनट कढ के जपजी साहब करन लग जाओ बोल के। मेरा विश्वास है वो सिखा तू 24 मिनट कढ के गुरु की बाणी जपजी साहब बोल के पढ़ जा। पूरे 24 घंटिया की जिम्मेवारी गुरु नानक की है तेरी। तू एक 24 मिनट कढ के ना एक जपजी साहब पढ़ ल, तेरे 24 घंटिया की जिम्मेवारी गुरु नानक की है। अपने घर में आप जपजी साहब पढ़िए। जिथे जपजी साहब पढ़िया जाता है उत्थे गुरु नानक का वस है। फिर तुहाडे घर का एटमोसफेयर चेंज हो जाना, आपे तो स्वर्ग लगन लग जा। अच्छा बीबी जी कह लग पई हो तुसी? मैं कल चले जाना, तुहानू पुछना नहीं किसी ने, मैं अज पुछ ला जी कह लग पई हाँ। करो माड़े जे हथ खड़े। हाँ घर वालों जी कह के बुलाया करो। तुसी भी भाई बीबे हो, बीबे हो तुसी भी, बीबियां नू जी कह के बुलाओ। उन्हां दे नाम नाल जी लाओ। जी लाण लग जाओ तुहाडे घर विच जी लगन लग जाना। आखो वाहिगुरु जी बोलन लग जाओ, तुहाडे घर च जी लगन लग जाने, तुहानू घर स्वर्ग लगन लग जाने। फिर गुरु की बख्शिश कृपा हो जानी है। मैं एक नैट ते सुनाई सी कथा, पाई अद्धी ना पाया करो। मैं उन्होंने कहना पूरा मैसेज पाया करो, लोगों को समझ आवे। ये थोड़ी भी इन्नी चीज कट के पाती। तो बीबी कहती भाई साहब जी असी पंजां पर सिंघां नूं प्रशादा छकाउणा है। मैं क्यों? कहती घर च कलेस बहुत हुंदा है। मैं चलो छका लो। अच्छा पंजां सिंघां नूं प्रशादा छकाउणा चंगी गल है, ये साडी गुरमत दी पिरत है। छकाओ, अरदासा कराओ, नाम जपो। आप फिर जपन लगो बाद च, कल्ला उन्हां दा कीतिया नहीं होना कुछ। तो मैं उन्हें कहा जी कोई गल नहीं, पंज सिंघ भेज दिंदे। तो कहिंदी भाई साहब जी असी दो गड्डियां लैके आए, क्योंकि तुहानूं पता है हुण पंज बंदे एक गड्डी च थोड़ी बैठे हैं इकट्ठे। तीन पिछे बैंदे एक मोहरे है ना, एक आप चलाऊगा। इंडिया वाला काम थोड़ी है वे अल्टो विच ही सत्त अठ बिठा लेंदे उत्थे। तां जदों अल्टो खुलदी फिर पता लगदा अठ बंदे अल्टो च। यार इत्थे पूरे बंदे बैंदे। वो दो गड्डियां लैके आए, तीन सिंह उधर बह गए, दो घर वाले नाल बह गए। वो चल पे हुण घरों ने अरदास कादी करवाउणी है, कलेश घर चों हटे। तो जदों उत्थे घर मोहरे उतरे वो बना के आई सी प्रशादा। तो उतरदे सार उन्हें अपनी गड्डी बंद की, सिंघां दे दरवाजे खोले, सिंह भी निकल आए। तो जो अपने घर वाले को जाके पता की कहती, कहती गगन चाबी कित्थे घर दी? वो कहता मेरे को नहीं तेरे को है। कहती नहीं तुहानू फड़ाई, तैनू फड़ाई सी। वो कहती मेरे को तू ना कुछ अजदा काम करी, तू ना कुछ जिम्मेवारी नवाई। वो तू तू करके उत्थे गर्म हो गए। वो तो महाराज की कृपा में चाबी लभ गई, नहीं गगन दे उत्थे बज जानी आई। ये कल परसों में किसी के घर गए, वो कहते भाई साहब जी आ घर वाली का, घर वाले का नाम गगन। मैं कहो यदि नहीं कथा पर ऊ चलो समझण वास्ते। तो वह गगन बेचारे चाबी लभ गई, नहीं उत्थे उन्हां दी बजन लगी सी। दरवाजा खोलिया, बिठाया, प्रशादा छकाया। हुण अगली गल सुनियो जिहड़ी तुहाडे कम आउण वाली। प्रशादा छका के मैं बच्ची नूं कहा बेटे इत्थे बह जाओ, किसी की अरदास नाल तुहाडा कलेश नहीं हटना। कोई प्रशादा छकाउण नाल तुहाडा कलेश नहीं हटना। पहली गल घर च नाम जपना शुरू कर। दूजी गल पेशेंस वधाओ। तू तू करके नहीं बोलीदा, एक दूजे की रिस्पैक्ट करन लग जाओ। पुत तू इहदी रिस्पैक्ट कर, यह तेरी रिस्पैक्ट करे। एक दूजे नूं जी कह के बुलाओ, उहदा फायदा पता की होना है? तुसीं एक दूजे की रिस्पैक्ट करन लग जाओ, तुहाडे बच्चे तुहाडी रिस्पैक्ट करन लग जाणगे। जे तुसीं एक दूजे की वाइफ हसबैंड रिस्पैक्ट नहीं करोगे, भुल जाओ कि तुहाडे बच्चे तुहाडी रिस्पैक्ट करनगे। जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे बच्चे तुहानूं प्यार करन, तुहाडी इज्जत करन, पहलां एक दूजे की इज्जत करो, सत्कार नाल बोलो। झगड़ा नहीं है।

अपने भाणे अंदर बतीत करवाउणी ग्रीव निवाज आप जी के हजूर शाम दे संध्या दे सजे हुए दीवाना अंदर अमृतमई कीर्तन उपरांत गुर इतिहास दी कथा होई है। पातशाह विशेष गुरमत समागम अधीन गुरमत सिद्धांत गुरबाणी इतिहास दियां विचारां होईयां हन। छे पौड़ियां

सिमरत वेद पुराण पुकारन पोतिया, ना बिना सब कूड़ा गाली होचिया। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोतिया, ना बिना सब कूड़ा गाली होचिया। नाम निदान पारा भगता मन वसै, जन्म मरण मो दुख साधु संग नसै। रहा मोहे बाद हंकार सर पर रुनिया, सुख ना पाए न मूला नाम विछुनिया। मेरी मेरी तारा बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतारा माया तंदिया। सोदत सोदत सोद तत विचारिया, ना बिना सुख नाए सर पर हारिया। आवह जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वादा जोनी परमते। जिनको पै दयाला तिन साधु संग पया, अमृत हर का नामा तिनी जनी जप लया। खोजै कोट असंख बहुत आनंद के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातारा अपना नाम दियो,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास। राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो। सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय करनौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज दातार पातशाह, आप जी के हजूर अरदास है जी। दीवान दी संपूर्ण तो उपरंत आप जी दे पावन स्वरूप दी टहल सेवा हुई है। पातशाह जी सोहिला साहब जी की बाणी का पाठ किया गया है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या आप जी की हजूरी विच विचरद्या होइया बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां लई खिमा बख्शिश करनी, अगे तो सुमत बख्शनी। पातशाह जी सेवादार संगत हाजिर है। आप जी इस वक्त अपने सुंदर आसना उपर विराजमान होके आराम फरमाओ। सेवकां नूं खुशियां बख्शिश करो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राम राजे गोर सिखी सो थान पालिया ले तुरमुख लावा तुरमुख लावा गुर सिखा की काल थाई पई जिन हार

सुनै सरागुणा के गाह, सुनै सिख पीर पात साहु, सुनै अंधे पावह राहु, सुनै हाथ वैस गाहु, नानक भगत सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुद, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने

तेवड़ हुए, नानक जाने साचा सूई। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्व समाले। वाजे नाद अनेक संखा, कीते वावन हारी। कीते राग परी सो कहियन, कीते गावन हारी। गावे तुहनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारी। गावे जित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारी। गावे ईसर बर्मा देवी, सोहन सदा सवारी। गावे इंद इदासन बैठी, देवत्या दर नाली। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारी। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारी। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाली। गावे मोहनिया मनमोहन, सुरगा मछ पयाले। गावन रतन उपाय तेरी, अड़सठ तीर्थ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारी। गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे। सेई तुदनो गावे जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन, से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारी। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी, रचना जिनर चाई। रंगी रंगी पाती, कर कर जिनसी माया जिनो पाई। कर कर वेख कीता अपना, जिवतिस दी वड्याई। ज्योतिस पावे सोई करसी, हुकम न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करह विभूत। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। आदेश तिसे आदेश, आदि अनिल अनाद अनाहत। जुग जुग एको वीस, भुगत ज्ञान दया भंडारण। घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की। रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोयकार चलावे है। लिखे आवे भाग, आदेश तिसे आदेश। आदि अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तवै चलावे।

अंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृश्रीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अवाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्ये समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, प्रपंगी परमाथे समस्ती विभूते, कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे, नमो सस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, पेखी अपरमी अपुगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंतर जंतरंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग। सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता, अधो उर्द अर्धंग अगंग ऊघ हर्ता, परम परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग, अछेदी अपेदी अनामंग अकामंग, समस्तो पराजी समस्त स्तामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले है थले है, अपीत है अपी है, प्रभु है अजू है, अदेश है अपीस है, पुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ती निधाने, नमस्तुंग निरनाथे, नमस्तुंग परमाथे, नमस्तुंगा गंजे, नमस्तुंगा पंजे, नमस्तुंगा काले, नमस्तुंगा पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृष्टंग, नमो सर्व कृष्टंग, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे, कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिद्धंग निवासी, चरपट छंद त्वय प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग अलख कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता,

परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुष अपार सर्व विस्वरचु स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुष अदीस धर्म तामस परम रहत अपूत अलख अपीस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन याद रूप सूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायिक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपीख सर्व शास्त्र न जानही जेह रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नीत भाखत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही बहुचित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपौ प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग आबा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपै निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडंड वाड्य

चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी स अधिस अदृश अकृस भगवती शांत त्व प्रसाद कथति किया सुज दिस किया पिज पिस किया गंज कर्म किया पंज परम किया पिज लोक किया दित सुख के अवधूत वर्ण के विभूत करने कि राजंग प्रवाह है कि तर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा पढ़ने कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपव अनूप है कि आदि अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है।

मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्या मन हो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता।

जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आग गवाईए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनु नी सुधाईए जे जरवाणा पर हरे जरवेश।

रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणजै। त्रिभवन महेप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत। त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत। त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत। कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अपियाओ। चंद सूरज दोए गुफै न देखा सुपन सौण न थाओ।

0: वाहेगुरु जिन्हां ने तेरे दर्शन कीते उन्हां दा अपमान लै गया। महाराज जी दे दर्शन करके वड्डियां वड्डियां दे हंकार दूर हो जांदे आ, हो मैं दूर हो जांदी। महाराज जिन्हां ने तुहाडे दर्शन प्राप्त कीते उन्हां दा अपमान लै गया, हंकार लै गया, ते जिन्हां ने अपमान छड़ दिता उन्हां नूं तुसीं इस जहान तों, इस भव सागर तों तार दिता।
1: जिनी तुधनों धन कहिया तिन जम नेड़ न आया।
0: हे वाहिगुरु गुरु नानक साहब, जिन्हां ने तैनू धन कहा, जेडे अपनी रसना तों कह देण धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब आखो हो धन धन धन गुर सोई। महाराज जेडे तेनू धन कहिंदे आ, जम उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदे, जम उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदे। धन तां परमेश्वर नूं कहना ना, बंदियां नूं धन थोड़ी कहीदा। शहीद भाई मनी सिंह जी ने एक जगह ते बचन लिखे आ वी बंदियां दी सोभा ना करो, लोकां नूं ना कहो वी धन। लोकां ना सा लाहे जो मर वंज सी, जिन्हां ने मर जाना मुक जाना उन्हां दी की सलाघा करनी। वह कहिंदे जे कोई गुणी बंदा दिसे, कोई भजनीक बंदा दिसे तो उन्हूं धन ना कहिए। कहिंदे वाहिगुरू नूं धन कहो ते कहो धन वाहिगुरु जिन अस नारे उपजाए, आखो सतनाम श्री। हे वाहिगुरु तू धन है कि तू एहो जे गुणी बंदे पैदा कीते आ, तू धन है। कहिंदे जेड़े परमेश्वर नूं धन धन कह के सलोंदे है, इत्थों तक के जेड़े परमेश्वर दे प्यारियां नूं भी धन कह के सलोंदे है, जम उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदे, जम उन्हां दा प्रताप वेख के छड़ जांदे हन।
1: बेअंत गुण तेरे कथे न जाही सतगुर पुरख मुरारे।
0: हे मेरे सतगुरु पुरख मुरारे, तेरे गुण बेअंत ने, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदान। जिहवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लहिए। हे वाहिगुरु तेरे बेअंत गुण ने वो कथे नहीं जा सकते, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, वो कथे नहीं जा सकते। तू अका

तेरा आसरा अपने हिरदे च रखिया, मेरे हिरदे विच तेरी टेक है, तेरा आसरा है, क्योंकि तेरे आसरे नल लग के इस संसार तो तरीदा, जित लग तरिया संसारे। जेड़े तेरे आसरे नल जुड़दे हन वो इस भव सागर तो संसार समुंदर तो तर जांदे हन। पंजवें पातशाह जी फरमाउंदे, हे वाहिगुरु मैं तेरी टेक तेरा आसरा अपने हिरदे विच धारण कीता है। पातशाह जी कृपा करन, ये पावन पवित्र गुरबाणी की पावन विचार साडे हिरदयां च वस जावे। जदों पंजवें पातशाह ने शब्द उचारिया, बाबा मोहन जी जो गुरु अमरदास साहब दे साहबजादे ने, वह गुरबाणी दियां पोथियां लैके चुबारे तो थले आए, पंजवें पातशाह जी दे चरणां विच मत्था टेक के गुरबाणी दियां पोथियां महाराज जी नूं भेट कीतियां। और गरीब नवाज पातशाह जी गुरबाणी दियां पोथियां लैके गोइंदवाल साहब तो श्री अमृतसर साहब आए, और इत्थे आ के बाकी बाणी नूं एकत्र करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन करवाया। धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने महान परोपकार बख्शिश की, पातशाह कृपा करन साडा सारयां दा गाव्या सुनिया साहिब थाए पावन। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी।

देखो अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहेबा क्या नहीं करते रह सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो कर शांत सुख मन आए वसया जने इच्छा सब पुजाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द पंच दो तुदवास कीते काल कंटक मारिया कह नानक तैं सुख होआ तित कर अनहद वाजे

सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कुसा, तिस पाछै बचरे चरिया। तिन कवन खड़ावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिधान।

तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहे हर पूजा जी तप तपहे जपहे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी।

जिसनो तू जानाए है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया।

तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाल, हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग

की फतह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख्य सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरिन को आज संगरिए, पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख्य हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हुजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तो जुजू करिए हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर

डंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस।